0: मी विभूती
1: आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।
2: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग ऐसे करते हैं जैसे मौत हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आएगी। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो करियर बनाना है, अभी बच्चों को सेटल करना है, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। हम मौत को एक ऐसी घटना मानते हैं जो बहुत दूर भविष्य में कहीं कहीं बहुत दूर खड़ी है। लेकिन कबीर साहब आज हमें एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वे कह रहे हैं कि भाई, मौत दूर नहीं है, उसने तो तुम्हें पकड़ रखा है। आज का दोहा सावधानी और वर्तमान की कीमत समझाने के बारे में है। आइए जानते हैं उस काल के हाथ हमारे कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कबीर कहाँ गर्भियो, काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारिसी, कै घरी कै परदेस। कबीर कहाँ गर्भियो, काल गहे कर केस,

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर कहाँ गर्बियो काल गहे कर केस। हे इंसान, तू किस बात का अहंकार करता है? तू देख नहीं पा रहा कि काल अर्थात मृत्यु ने तेरे केस यानी बाल पकड़ रखे हैं। कबीर यहाँ एक बहुत भयानक लेकिन सत्य तस्वीर खींच रहे हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा हो। मौत ने हमें वैसे ही पकड़ रखा है, हम उसकी पकड़ में हैं, बस उसने अभी अंतिम प्रहार नहीं किया है। अगली पंक्ति में उसकी अनिश्चितता बताते हैं, न जाने कहाँ मारी सी, कोई नहीं जानता कि वह आखिरी चोट कहाँ लगेगी, कै घरी कै परदेश। क्या पता तुम अपने घर में होंगे या किसी अनजान शहर या परदेश में। वह वक्त, वह जगह और वह तरीका सब गुप्त हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे मौत एक ऐसा वारंट लेकर खड़ी है जिस पर तारीख नहीं लिखी, वह कभी भी कहीं भी तामील हो सकता है। कबीर कह रहे हैं कि जब मौत ने तुम्हारे बाल पकड़ ही रखे हैं तो फिर ये अकड़, ये नफरत और एक कल कल की रट कैसी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी कल वाली टालम टोल को देखिए। हम अक्सर अच्छे कामों को कल पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी को प्रेम करें तो कल कह देंगे, किसी से माफ़ी मांगेंगे तो कल मांगेंगे। परंतु आज कोशिश कीजिए यह समझने की कि हमारे पास कल की कोई गारंटी नहीं है। जब काल ने बाल पकड़ ही रखे हैं तो क्यों ना इस बचे हुए वक्त को सबसे खूबसूरत बना लिया जाए। आज ही प्यार बांटेंगे, आज ही प्रार्थना कीजिए और आज ही शांत हो जाइए, क्योंकि जब वह खींचेगा तो न घर काम आएगा न परदेश की दौलत। अपनी हर सांस को आखिरी मानकर ही जीना असली सावधानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: मंडळी, दूध निर्मिती आणि पुरवठा हे दोन वेगळे भाग आहेत। पशुधनाशी निगडीत दूध निर्मितीचा भाग हा सुलभपणे पदरात मिळवल्यानंतर उत्पादित मालाची विक्री करणं आणि अर्थार्जन करणं हे महत्त्वाचं ठरतं। दूध विक्री किंवा दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती आणि विक्री यांच्या यशस्वीतेवर पैसा मिळतो। दूध प्रत हे विशेष असूनही दूध विक्रीत अनेकदा अडथळे निर्माण होतात। सहज भेसळ होणारे दूध, ग्राहकांकडून खरेदी होताना दूध गुणप्रतिपेक्षा विक्री करण्यावरचा विश्वास हा अधिक महत्वाचा आहे आणि म्हणूनच सहकारी दूध संघाच्या दूध उत्पादनास अधिक महत्व आहे। जगात दूध विक्रीची सक्षम यंत्रणा सहकारी माध्यमातून अनेक देशात राबवली जाते। दूध संघाच्या सक्षम यंत्रणेकडून सहकारी तत्वावर दूध विक्री, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, बाजारपेठेचा शोध, कमी खर्चात अधिक दूध विक्री यंत्रणा या सगळ्या राबवित आहेत। आता याचा या बाबतीत म्हणजे जास्तीत जास्त फायदेशीर विचार करणं राबवणं ते महत्वाचं ठरतं। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी सतत प्रयत्न आणि गुणवत्ता विकास करणं हे फायद्याचं ठरतं। एका राज्यातील दूध दुसऱ्या राज्यात किंवा विभागात विक्री केल्यास प्रगती झाली आहे असा दावा करता येत नाही। मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज केल्यानंतर भरघोस पैसा मिळवता येऊ शकेल हे दूध विक्रीच्या पद्धतीत बदल करूनच। भारतीय दुग्धजन्य पदार्थाची चव इतर परिक्यांना करून दिल्यास या देशातील परंपरागत होणारे दुग्धजन्य उत्पादने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रिय होऊ शकतील। भारतीय पशुधनाची दुग्ध उत्पादन क्षमता ही केवळ 12% एवढीच असून ती प्रगत विकसनशील देशातील पशुधनापेक्षा फार कमी आहे। अशा दृष्टीने पशु व्यवसायात उद्योजकता अवलंबणे आणि शाश्वत फायदेशीर दुग्ध व्यवसाय राबवणं गरजेचं आहे।

0: रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोते हो, आपण ट्यून केलंय रेडिओ मनभावन 90.8 FM. आर जे शुभांगी सोबत ओल्ड इज गोल्ड मध्ये आज आपण ऐकली गीतकार मजरूह सुलतानपुरी यांची काही अवीट गोडी असलेली गाणी. तुम्हाला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर आम्हाला कळवा. आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9284994933. या नंबरवर आमच्याशी संपर्क साधा आणि तुम्हाला आमचा कार्यक्रम कसा वाटला ते नक्की कळवा. तुम्ही कॉल करू शकता किंवा व्हॉट्सअपद्वारे मेसेज सुद्धा पाठवू शकता. नक्कीच तुम्हाला हा कार्यक्रम आवडला असेल अशी आशा करते. तेव्हा मी आरजे शुभांगी आता तुमचा निरोप घेतेय. पुन्हा भेटूया पुढच्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हार्ट टचिंग. ट्यून इन एनीवेअर रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हार्ट टचिंग. हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल. मैं हूं आपकी अपनी आरजे शुभांगी और आप सुन रहे हैं रेडियो का फेवरेट शो ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभांगी के साथ. आज हम किसी मामूली इंसान की बात नहीं कर रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और सभी मुस्कुरा भी दें. जी हाँ, द वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब. रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था कि अगर वो पहाड़ को सलाम कर देते तो पहाड़ भी झुक कर कहता, भाई साहब एक गाना और हो जाए.

तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गाने से जो आज भी हर शादी में दूल्हे की एंट्री पर बजता है, चाहे दूल्हा फूलों जैसा हो या चलिए छोड़िए। कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गाने को इतनी शिद्दत से गाया कि म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को लगा कि स्टूडियो में सच में फूल गिर रहे हैं। चलिए सुनते हैं सूरज फिल्म से बहारो फूल बरसाओ।

दोस्तों, अगला गाना उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जाते, बस ये गाना सुनकर ही अपनी कैलोरीज जो होती है वो बर्न कर लेते हैं। रफ़ी साहब थोड़े शर्मिले थे जब आरडी बर्मन ने ये हाई एनर्जी गाना उन्हें दिया, तो रफ़ी साहब ने पूछा, पंचम ये गाना है या मैराथन? पर जब गाया तो सच में वो रॉक स्टार बन गए। वो गाना है, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, तीसरी मंजिल से ये गाना सिर्फ आपके लिए।

नगमे। तो लीजिए, अब पेश है वो गाना जिसे सुनकर यमराज भी अपनी डायरी बंद कर दे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब का गला इतना छिल गया था कि उन्होंने 3 दिन तक बात तक नहीं की थी। घर वाले डर गए थे कि कहीं रफ़ी साहब मौन व्रत पर तो नहीं चले गए। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना, ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा मूवी से।

तो अगला गाना उन प्रेमियों के लिए जो सोचते हैं कि उनका प्यार सीक्रेट है, जबकि पूरी मोहल्ले की व्हाट्सएप कम्युनिटी को पता चल चुका होता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ब्रह्मचारी फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपको जवाब ना सूझे तो बस ये गाना गा देना, जान बच जाएगी। तो ये गाना है चौधरी का चांद हो, चौधरी का चांद फिल्म से ये गाना। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभंगी के साथ। आजकल लोग चमकीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने तो सितारों की साड़ी ही पहना दी थी। लीजिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना प्रिंस फिल्म से, बदन पे सितारे लपेटे हुए।

0: पीजे सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: दोस्तों, अगला गाना जो है ये गाना ऑफिस जाने वालों के लिए नेशनल एंथम होना चाहिए। आप सोचेंगे भाई क्यों? क्योंकि जॉनी वॉकर के लिए गाते वक्त रफ़ी साहब खुद भी वैसे ही चेहरे बनाते थे जैसे जॉनी स्क्रीन पर बनाने वाले थे। तो ये गाना है डेडिकेटेड ऑफिस जाने वालों के लिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, पैसा फिल्म से ये गाना बहुत ही प्यारा सा सुनते हैं।
1: मालिश तेल मालिश जंपे।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग आरजे शुभांगी के साथ। हम किसी से कम नहीं, फिल्म से क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना उन लोगों के लिए जिन्होंने उधार लेकर वापस नहीं किया। भाई वादा तो किया था, लेकिन वादे का क्या हुआ? सुनते हैं बहुत ही बढ़िया सा गाना।

दोस्तों, जब मदन मोहन का संगीत और रफी जी की आवाज, ऐसा लगता है जैसे मलाई में केसर मिल गया हो। अगला गाना सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म से, तुम जो मिल गए है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ रफी साहब।

दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में अगला गाना सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। झरोखे में बिठाया तो ठीक है, बस सिक्योरिटी गार्ड मत लगा देना।

दोस्तों रफ़ी साहब इतने दरिया दिल थे कि कई बार नए संगीतकारों से सिर्फ 1 रुपया लेकर गाना गा देते थे। आज के दौर में 1 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन रफ़ी साहब सच में जिंदा दिल इंसान थे, दरिया दिल इंसान थे। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी फिल्म से। कव्वाली का असली मज़ा, रफ़ी साहब की आवाज़ सुन के तो पर्दे के पीछे वाले भी बाहर आ जाए शायद।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

दोस्तों आज का ये ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड, ये महफिल और ये समा सिर्फ और सिर्फ उस आवाज़ के नाम है जिसे सुनकर फरिश्ते भी रुक जाते हैं। दोस्तों संगीत की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी वो सूरज है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। आज ओल्ड इज गोल्ड में हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम रफ़ी साहब की उस रूहानी दुनिया की सैर करेंगे जहाँ सादगी और सुरों का संगम था। तो क्या आप तैयार हैं इस सुरीले सफ़र के लिए? लीजिए सुनते हैं अगला गाना, बाबू समझो इशारे, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गाना। ये गाना आज की ट्रैफिक पुलिस वालों को डेडिकेट करना चाहिए सच में।

दोस्तों, क्या आपको पता है उनका बचपन का नाम फीको, मतलब उनके घर वाले रफ़ी साहब को फीको बुलाते थे। अमृतसर के पास एक छोटे से गांव से उनका सफ़र शुरू हुआ और वो एक फ़कीर के पीछे पीछे गाना गाते हुए संगीत की दुनिया में आए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम दोनों फिल्म से ये गाना

जब रफ़ी साहब ने 1948 में गांधी जी की शहादत के बाद सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाया, तो इसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर पर बुलाकर चांदी का मेडल भी दिया था। रफ़ी साहब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। वो ज़कात मतलब दान के पैकेट गुमनाम तरीके से बांटते थे ताकि लेने वालों को शर्मिंदगी ना हो। कई बार तो उन्होंने छोटे प्रोड्यूसर से सिर्फ 1 रुपये लेकर ही गाना गा दिया था। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, तेरे घर के सामने मूवी से, दिल का भंवर करे पुकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड, आज शुभांगी के साथ। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। जंगली फिल्म से यह गाना, शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज और रफ़ी साहब की आवाज़। याहू की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया क्या? नहीं, सुनते हैं ये बेहतरीन गाना।

0: दोस्तों, पुराने जमाने में ना मोबाइल था, ना व्हाट्सअप, ना इंस्टा, ना फेसबुक, फिर भी अपनी फीलिंग्स यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। वो कैसे? जी हाँ, उस जमाने में खत लिखे जाते थे। आज तो ब्लू टिक देखकर ही ब्रेकअप हो जाता है। तो सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना कन्यादान फिल्म से, लिखे जो खत तुझे।
1: लिखे जो

तो दोस्तों फिर से एक बार जंगली फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। जब रफ़ी साहब मुझको मेरे ही रंग में रंग दे गाते हैं, तो लगता है कि दुनिया में बस प्यार ही प्यार है, बाकी सब मोह माया है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली फिल्म से।

दोस्तों इसके बाद सुनते हैं तीसरी मंजिल, ओ हसीना जुल्फों वाली, जुल्फे और हसीनाएं। रफ़ी साहब की आवाज़ में जो खनक है वो किसी हीरे से कम नहीं।

0: अपन आपको?
1: हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदी में गाया, लेकिन क्या आपको पता है कि रफ़ी साहब ने अंग्रेज़ी, डच, स्पेनिश और फारसी समेत 14 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गाने गाए थे। जब किशोर कुमार के लिए गाया, वैसे तो दुनिया इन्हें कॉम्पिटिटर मानती थी, लेकिन हकीकत में दोनों पक्के दोस्त थे। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए शरारत और रागिनी जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की थी। किसी की तारीफ करनी हो तो रफ़ी साहब से सीखे। रफ़ी साहब जिस अंदाज में तारीफ करते थे वो अंदाज ही अलग था। ससुराल फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM ओल्ड इज गोल्ड आरज शुभांगी के साथ। दोस्तों कई बार मैं सोचती हूँ जब ये गाना सुनती हूँ कि आंखें गुलाबी कैसे हो सकती है। हो सकती है क्या? जी हाँ, ज़रूर हो सकती है। जब रफ़ी साहब गाना गाएं तो कुछ भी हो सकता है। शायद नींद पूरी नहीं होगी या फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में जो नशा है वो ज़रूर उस पे चढ़ा है, इसलिए आंखें गुलाबी हो सकती है। द ट्रेन फिल्म से गुलाबी आंखें।

तो दोस्तों अब सुनते हैं कर्ज फिल्म से दर्द ए दिल दर्द ए जिगर। ऋषि कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी ने ऐसा जादू किया कि आज भी डीजे पर ये गाना जब बजता है तो लोग नाचने लगते हैं।

दोस्तों, अभी सुनते हैं एक ऐसा गाना जिस गाने को गाते वक्त खुद रफ़ी साहब फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की विदाई का वक्त करीब था और ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड तभी किया था। बाबुल की दुआएं लेती जा, नीलकमल फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, शम्मी कपूर साहब के स्टाइल को अगर किसी ने आवाज दी तो वो रफी साहब थे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त शम्मी जी स्टूडियो के बाहर खड़े होकर रफी साहब को एक्शन करके दिखा रहे थे ताकि रफी साहब वही शरारत अपनी आवाज में ला सके। ये गाना था तुमसा नहीं देखा, तुमसा नहीं देखा मूवी से ये गाना सुनते हैं।

दोस्तों, रफ़ी साहब ने कहा था कि आवाज़ कभी नहीं मरती और उनकी आवाज़ तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में बसी है। मैं हूँ आरजे शुभांगी। रेडियो पर प्यार बांटते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर ज़िले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम फीको था। रफ़ी साहब के गायकी के सफ़र की शुरुआत एक फ़कीर का पीछा करते हुए हुई थी। वो फ़कीर गलियों में गाते हुए निकलता था और नन्हे रफ़ी उनकी नकल किया करते थे। फिर से एक बार बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, दुलारी फिल्म से सुहानी रात ढल चुकी।

0: चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
1: दोस्तों, जब हम रफ़ी साहब के खासियत के बारे में बात करते हैं तो रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जिस अभिनेता जैसे कि दिलीप कुमार हो, शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर या ऋषि कपूर या और कोई, तो इन अभिनेताओं के लिए जब वो गाते थे अपनी आवाज़ उसी के चेहरे और हाव भाव के अनुसार ढाल लेते थे। यही खूबी उनमें थी। शम्मी कपूर साहब कहते थे, रफ़ी साहब ने मुझे मेरी आवाज़ दी। याहू जैसा गाना रफ़ी साहब की ऊर्जा के बिना अधूरा होता। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, मेरे सनम फिल्म से पुकारता चला हूँ मैं।

तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब भारतीय संगीत जगत का वो अनमोल रत्न है जिनकी आवाज़ को खुदा की आवाज़ कहा जाता है। रफ़ी साहब ने मराठी में भी कुछ बेहद खूबसूरत गाने और अभंग गाए हैं जो महाराष्ट्र के घरों में आज भी गूंजते हैं, जैसे कि हा छंद जीवाला लावी पिसे।

दोस्तों, पंचमदा के साथ उन्होंने तीसरी मंजिल में रॉक एंड रोल का वो जादू बिखेरा कि पूरी दुनिया झूम उठी। रफी साहब एक ऐसे फरिश्ते थे जो दुनिया को सुरों की विरासत देने आए थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं तो सिर्फ गाता हूँ, सुर तो ऊपर वाला लगाता है। 31 जुलाई 1980 को जब उनका निधन हुआ, तब मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ उनके चाहने वाले ही नहीं बल्कि आसमान भी रो रहा था। उनके जनाजे में हजारों की भीड़ थी, जो किसी बादशाह की विदाई से कम नहीं थी।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।

0: मी विभूती आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग ऐसे करते हैं जैसे मौत हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आएगी। हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो करियर बनाना है, अभी बच्चों को सेटल करना है, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। हम मौत को एक ऐसी घटना मानते हैं जो बहुत दूर भविष्य में कहीं कहीं बहुत दूर खड़ी है। लेकिन कबीर साहब आज हमें एक ऐसी सच्चाई बता रहे हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वे कह रहे हैं कि भाई, मौत दूर नहीं है, उसने तो तुम्हें पकड़ रखा है। आज का दोहा सावधानी और वर्तमान की कीमत समझाने के बारे में है। आइए जानते हैं उस काल के हाथ हमारे कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कबीर कहाँ गर्भियो, काल गहे कर केस, ना जाने कहाँ मारिसी, कै घरी कै परदेस। कबीर कहाँ गर्भियो, काल गहे कर केस,

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर कहाँ गर्बियो काल गहे कर केस। हे इंसान, तू किस बात का अहंकार करता है? तू देख नहीं पा रहा कि काल अर्थात मृत्यु ने तेरे केस यानी बाल पकड़ रखे हैं। कबीर यहाँ एक बहुत भयानक लेकिन सत्य तस्वीर खींच रहे हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा हो। मौत ने हमें वैसे ही पकड़ रखा है, हम उसकी पकड़ में हैं, बस उसने अभी अंतिम प्रहार नहीं किया है। अगली पंक्ति में उसकी अनिश्चितता बताते हैं, न जाने कहाँ मारी सी, कोई नहीं जानता कि वह आखिरी चोट कहाँ लगेगी, कै घरी कै परदेस। क्या पता तुम अपने घर में होंगे या किसी अनजान शहर या परदेश में, वह वक्त वह जगह और वह तरीका सब गुप्त हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे मौत एक ऐसा वारंट लेकर खड़ी है जिस पर तारीख नहीं लिखी, वह कभी भी कहीं भी तामील हो सकता है। कबीर कह रहे हैं कि जब मौत ने तुम्हारे बाल पकड़ ही रखे हैं तो फिर ये अकड़, ये नफरत और एक कल कल की रट कैसी। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी कल वाली टालम टोल को देखिए। हम अक्सर अच्छे कामों को कल पर टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि किसी को प्रेम करें तो कल कह देंगे, किसी से माफ़ी मांगेंगे तो कल मांगेंगे। परंतु आज कोशिश कीजिए यह समझने की कि हमारे पास कल की कोई गारंटी नहीं है। जब काल ने बाल पकड़ ही रखे हैं तो क्यों ना इस बचे हुए वक्त को सबसे खूबसूरत बना लिया जाए। आज ही प्यार बांटेंगे, आज ही प्रार्थना कीजिए और आज ही शांत हो जाइए, क्योंकि जब वह खींचेगा तो न घर काम आएगा न परदेश की दौलत। अपनी हर सांस को आखिरी मानकर ही जीना असली सावधानी है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: मंडळी, दूध निर्मिती आणि पुरवठा हे दोन वेगळे भाग आहेत। पशुधनाशी निगडीत दूध निर्मितीचा भाग हा सुलभपणे पदरात मिळवल्यानंतर उत्पादित मालाची विक्री करणं आणि अर्थार्जन करणं हे महत्त्वाचं ठरतं। दूध विक्री किंवा दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती आणि विक्री यांच्या यशस्वीतेवर पैसा मिळतो। दूध प्रत हे विशेष असूनही दूध विक्रीत अनेकदा अडथळे निर्माण होतात। सहज भेसळ होणारे दूध, ग्राहकांकडून खरेदी होताना दूध गुणप्रतिपेक्षा विक्री करण्यावरचा विश्वास हा अधिक महत्वाचा आहे आणि म्हणूनच सहकारी दूध संघाच्या दूध उत्पादनास अधिक महत्व आहे। जगात दूध विक्रीची सक्षम यंत्रणा सहकारी माध्यमातून अनेक देशात राबवली जाते। दूध संघाच्या सक्षम यंत्रणेकडून सहकारी तत्वावर दूध विक्री, दुग्धजन्य पदार्थ निर्मिती, बाजारपेठेचा शोध, कमी खर्चात अधिक दूध विक्री यंत्रणा या सगळ्या राबवित आहेत। आता याचा या बाबतीत म्हणजे जास्तीत जास्त फायदेशीर विचार करणं राबवणं ते महत्वाचं ठरतं। आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी सतत प्रयत्न आणि गुणवत्ता विकास करणं हे फायद्याचं ठरतं। एका राज्यातील दूध दुसऱ्या राज्यात किंवा विभागात विक्री केल्यास प्रगती झाली आहे असा दावा करता येत नाही। मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ काबीज केल्यानंतर भरघोस पैसा मिळवता येऊ शकेल हे दूध विक्रीच्या पद्धतीत बदल करूनच। भारतीय दुग्धजन्य पदार्थाची चव इतर परिक्यांना करून दिल्यास या देशातील परंपरागत होणारे दुग्धजन्य उत्पादने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लोकप्रिय होऊ शकतील। भारतीय पशुधनाची दुग्ध उत्पादन क्षमता ही केवळ 12% एवढीच असून ती प्रगत विकसनशील देशातील पशुधनापेक्षा फार कमी आहे। अशा दृष्टीने पशु व्यवसायात उद्योजकता अवलंबणे आणि शाश्वत फायदेशीर दुग्ध व्यवसाय राबवणं गरजेचं आहे।

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

दोस्तों सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोते हो, आपण ट्यून केलंय रेडिओ मनभावन 90.8 FM. आर जे शुभांगी सोबत ओल्ड इज गोल्ड मध्ये आज आपण ऐकली गीतकार मजरूह सुलतानपुरी यांची काही अवीट गोडी असलेली गाणी. तुम्हाला हा कार्यक्रम कसा वाटला ते जरूर आम्हाला कळवा. आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 9284994933. या नंबरवर आमच्याशी संपर्क साधा आणि तुम्हाला आमचा कार्यक्रम कसा वाटला ते नक्की कळवा. तुम्ही कॉल करू शकता किंवा व्हॉट्सअपद्वारे मेसेज सुद्धा पाठवू शकता. नक्कीच तुम्हाला हा कार्यक्रम आवडला असेल अशी आशा करते. तेव्हा मी आरजे शुभांगी आता तुमचा निरोप घेतेय. पुन्हा भेटूया पुढच्या कार्यक्रमात. तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हार्ट टचिंग. ट्यून इन एनीवेअर रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हार्ट टचिंग. हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल. मैं हूं आपकी अपनी आरजे शुभांगी और आप सुन रहे हैं रेडियो का फेवरेट शो ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभांगी के साथ. आज हम किसी मामूली इंसान की बात नहीं कर रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए और सभी मुस्कुरा भी दें. जी हाँ, द वन एंड ओनली मोहम्मद रफ़ी साहब. रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था कि अगर वो पहाड़ को सलाम कर देते तो पहाड़ भी झुककर कहता, भाई साहब एक गाना और हो जाए.

तो चलिए शुरुआत करते हैं उस गाने से जो आज भी हर शादी में दूल्हे की एंट्री पर बजता है, चाहे दूल्हा फूलों जैसा हो या चलिए छोड़िए। कहते हैं रफ़ी साहब ने इस गाने को इतनी शिद्दत से गाया कि म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को लगा कि स्टूडियो में सच में फूल गिर रहे हैं। चलिए सुनते हैं सूरज फिल्म से बहारो फूल बरसाओ।

दोस्तों, अगला गाना उन लोगों के लिए है जो जिम नहीं जाते, बस ये गाना सुनकर ही अपनी कैलोरीज जो होती है वो बर्न कर लेते हैं। रफ़ी साहब थोड़े शर्मिले थे जब आरडी बर्मन ने ये हाई एनर्जी गाना उन्हें दिया, तो रफ़ी साहब ने पूछा, पंचम ये गाना है या मैराथन? पर जब गाया तो सच में वो रॉक स्टार बन गए। वो गाना है, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तीसरी मंजिल से ये गाना सिर्फ आपके लिए। आजा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो वन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। मैं हूं आपकी आरजे शुभांगी। ओल्ड इज गोल्ड में हम आज सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ बेहतरीन नगमे। तो लीजिए, अब पेश है वो गाना जिसे सुनकर यमराज भी अपनी डायरी बंद कर दे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब का गला इतना छिल गया था कि उन्होंने 3 दिन तक बात तक नहीं की थी। घर वाले डर गए थे कि कहीं रफ़ी साहब मौन व्रत पर तो नहीं चले गए। सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना ओ दुनिया के रखवाले, बैजू बावरा मूवी से।

दोस्तों, अगला गाना उन प्रेमियों के लिए जो सोचते हैं कि उनका प्यार सीक्रेट है, जबकि पूरी मोहल्ले की व्हाट्सएप कम्युनिटी को पता चल चुका होता है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, ब्रह्मचारी फिल्म से ये गाना।

तो दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपको जवाब ना सूझे, तो बस ये गाना गा देना, जान बच जाएगी। तो ये गाना है चौधरी का चांद हो, चौधरी का चांद फिल्म से ये गाना। इस गाने के लिए रफ़ी साहब को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड आरजे शुभंगी के साथ। आजकल लोग चमकीले कपड़े पहनते हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने तो सितारों की साड़ी ही पहना दी थी। लीजिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना, प्रिंस फिल्म से बदन पे सितारे लपेटे हुए।

0: पीजे सरकार
1: कहने कहीं की मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: दोस्तों, अगला गाना जो है ये गाना ऑफिस जाने वालों के लिए नेशनल एंथम होना चाहिए। आप सोचेंगे भाई क्यों? क्योंकि जॉनी वॉकर के लिए गाते वक्त रफ़ी साहब खुद भी वैसे ही चेहरे बनाते थे जैसे जॉनी स्क्रीन पर बनाने वाले थे। तो ये गाना है डेडिकेटेड ऑफिस जाने वालों के लिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, पैसा फिल्म से ये गाना बहुत ही प्यारा सा सुनते हैं।
1: मालिश तेल मालिश चंपे।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग आरजे शुभांगी के साथ। हम किसी से कम नहीं, फिल्म से क्या हुआ तेरा वादा, ये गाना उन लोगों के लिए जिन्होंने उधार लेकर वापस नहीं किया। भाई वादा तो किया था, लेकिन वादे का क्या हुआ? सुनते हैं बहुत ही बढ़िया सा गाना।

दोस्तों, जब मदन मोहन का संगीत और रफी जी की आवाज, ऐसा लगता है जैसे मलाई में केसर मिल गया हो। अगला गाना सुनते हैं हंसते जख्म फिल्म से, तुम जो मिल गए है। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ रफी साहब।

दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड में अगला गाना सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर। झरोखे में बिठाया तो ठीक है, बस सिक्योरिटी गार्ड मत लगा देना।

दोस्तों, रफ़ी साहब इतने दरिया दिल थे कि कई बार नए संगीतकारों से सिर्फ 1 रुपया लेकर गाना गा देते थे। आज के दौर में 1 रुपये में क्या मिलता है, लेकिन रफ़ी साहब सच में जिंदा दिल इंसान थे, दरिया दिल इंसान थे। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, पर्दा है पर्दा, अमर अकबर एंथनी फिल्म से। कव्वाली का असली मज़ा, रफ़ी साहब की आवाज़ सुन के तो पर्दे के पीछे वाले भी बाहर आ जाए शायद।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: दोस्तों, आज का ये ओल्ड इज गोल्ड एपिसोड, ये महफिल और ये समा सिर्फ और सिर्फ उस आवाज़ के नाम है जिसे सुनकर फरिश्ते भी रुक जाते हैं। दोस्तों, संगीत की दुनिया में कई सितारे आए और गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी वो सूरज है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। आज ओल्ड इज गोल्ड में हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे, हम रफ़ी साहब की उस रूहानी दुनिया की सैर करेंगे जहाँ सादगी और सुरों का संगम था। तो क्या आप तैयार हैं इस सुरीले सफ़र के लिए? लीजिए सुनते हैं अगला गाना, बाबू समझो इशारे, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गाना। ये गाना आज की ट्रैफिक पुलिस वालों को डेडिकेट करना चाहिए सच में।
1: बाजू

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

दोस्तों, क्या आपको पता है उनका बचपन का नाम फीको, मतलब उनके घर वाले रफ़ी साहब को फीको बुलाते थे। अमृतसर के पास एक छोटे से गांव से उनका सफ़र शुरू हुआ और वो एक फ़कीर के पीछे पीछे गाना गाते हुए संगीत की दुनिया में आए। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हम दोनों फिल्म से ये गाना, धुएं में छल्ला उड़ाना रफ़ी साहब ने ही सिखाया, लेकिन याद रहे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं।

जब रफ़ी साहब ने 1948 में गांधी जी की शहादत के बाद सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों बापू की अमर कहानी गाया, तो इसे सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने रफ़ी साहब को अपने घर पर बुलाकर चांदी का मेडल भी दिया था। रफ़ी साहब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देते थे। वो ज़कात मतलब दान के पैकेट गुमनाम तरीके से बांटते थे ताकि लेने वालों को शर्मिंदगी ना हो। कई बार तो उन्होंने छोटे प्रोड्यूसर से सिर्फ 1 रुपये लेकर ही गाना गा दिया था। लीजिए सुनते हैं अगला गाना, तेरे घर के सामने मूवी से, दिल का भंवर करे पुकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, ओल्ड इज गोल्ड, आज शुभांगी के साथ। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जंगली फिल्म से ये गाना, शम्मी कपूर की बॉडी लैंग्वेज और रफी साहब की आवाज। याहू की चिल्लाहट सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया क्या? नहीं, सुनते हैं ये बेहतरीन गाना।

दोस्तों, पुराने जमाने में ना मोबाइल था, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टा, ना फेसबुक, फिर भी अपनी फीलिंग्स यहाँ से वहाँ तक पहुँचाई जाती थी। वो कैसे? जी हाँ, उस जमाने में खत लिखे जाते थे। आज तो ब्लू टिक देखकर ही ब्रेकअप हो जाता है। तो सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गाना कन्यादान फिल्म से, लिखे जो खत तुझे हैं।

दोस्तों फिर से एक बार जंगली फिल्म से बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, जो मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। जब रफ़ी साहब मुझको मेरे ही रंग में रंग दे गाते हैं, तो लगता है कि दुनिया में बस प्यार ही प्यार है, बाकी सब मोह माया है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली फिल्म से।

दोस्तों इसके बाद सुनते हैं तीसरी मंजिल, ओ हसीना जुल्फों वाली, जुल्फे और हसीनाएं। रफी साहब की आवाज में जो खनक है वो किसी हीरे से कम नहीं।

0: अपन आपको।
1: हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदी में गाया, लेकिन क्या आपको पता है कि रफ़ी साहब ने अंग्रेज़ी, डच, स्पेनिश और फारसी समेत 14 से ज़्यादा भारतीय भाषाओं में गाने गाए थे। जब किशोर कुमार के लिए गाया, वैसे तो दुनिया इन्हें कॉम्पिटिटर मानती थी, लेकिन हकीकत में दोनों पक्के दोस्त थे। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए शरारत और रागिनी जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की थी। किसी की तारीफ करनी हो तो रफ़ी साहब से सीखे। रफ़ी साहब जिस अंदाज में तारीफ करते थे वो अंदाज ही अलग था। ससुराल फिल्म से ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनते हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM ओल्ड इज गोल्ड आरज शुभांगी के साथ। दोस्तों कई बार मैं सोचती हूँ जब ये गाना सुनती हूँ कि आंखें गुलाबी कैसे हो सकती है। हो सकती है क्या? जी हाँ ज़रूर हो सकती है। जब रफ़ी साहब गाना गाएं तो कुछ भी हो सकता है। शायद नींद पूरी नहीं होगी या फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में जो नशा है वो ज़रूर उस पे चढ़ा है, इसलिए आंखें गुलाबी हो सकती है। द ट्रेन फिल्म से गुलाबी आंखें।

तो दोस्तों अब सुनते हैं कर्ज फिल्म से दर्द ए दिल दर्द ए जिगर। ऋषि कपूर और रफ़ी साहब की जोड़ी ने ऐसा जादू किया कि आज भी डीजे पर ये गाना जब बजता है तो लोग नाचने लगते हैं।

दोस्तों, अभी सुनते हैं एक ऐसा गाना जिस गाने को गाते वक्त खुद रफ़ी साहब फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी की विदाई का वक्त करीब था और ये गाना उन्होंने रिकॉर्ड तभी किया था। बाबुल की दुआएं लेती जा, नीलकमल फिल्म से ये गाना।

दोस्तों, शम्मी कपूर साहब के स्टाइल को अगर किसी ने आवाज़ दी तो वो रफ़ी साहब थे। इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त शम्मी जी स्टूडियो के बाहर खड़े होकर रफ़ी साहब को एक्शन करके दिखा रहे थे ताकि रफ़ी साहब वही शरारत अपनी आवाज़ में ला सके। ये गाना था तुमसा नहीं देखा, तुमसा नहीं देखा मूवी से ये गाना सुनते हैं।

दोस्तों, रफ़ी साहब ने कहा था कि आवाज़ कभी नहीं मरती, और उनकी आवाज़ तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में बसी है। मैं हूँ आरजे शुभांगी। रेडियो पर प्यार बांटते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर ज़िले के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम फीको था। रफ़ी साहब के गायकी के सफ़र की शुरुआत एक फ़कीर का पीछा करते हुए हुई थी। वो फ़कीर गलियों में गाते हुए निकलता था और नन्हे रफ़ी उनकी नकल किया करते थे। फिर से एक बार बहुत ही प्यारा सा गाना सुनते हैं, दुलारी फिल्म से सुहानी रात ढल चुकी।

0: की ना जाने तुम कब आओगे।
1: दोस्तों, जब हम रफ़ी साहब के खासियत के बारे में बात करते हैं तो रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जिस अभिनेता, जैसे कि दिलीप कुमार हो, शम्मी कपूर, जॉनी वॉकर या ऋषि कपूर या और कोई, तो इन अभिनेताओं के लिए जब वो गाते थे अपनी आवाज़ उसी के चेहरे और हाव भाव के अनुसार ढाल लेते थे। यही खूबी उनमें थी। शम्मी कपूर साहब कहते थे, रफ़ी साहब ने मुझे मेरी आवाज़ दी। याहू जैसा गाना रफ़ी साहब की ऊर्जा के बिना अधूरा होता। लीजिए सुनते हैं अगला गाना मेरे सनम फिल्म से, पुकारता चला हूँ मैं।

तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब भारतीय संगीत जगत का वो अनमोल रत्न है जिनकी आवाज़ को खुदा की आवाज़ कहा जाता है। रफ़ी साहब ने मराठी में भी कुछ बेहद खूबसूरत गाने और अभंग गाए हैं जो महाराष्ट्र के घरों में आज भी गूंजते हैं, जैसे कि हा छंद जीवाला लावी पिसे।

दोस्तों पंचमदा के साथ उन्होंने तीसरी मंजिल में रॉक एंड रोल का वो जादू बिखेरा कि पूरी दुनिया झूम उठी। रफी साहब एक ऐसे फरिश्ते थे जो दुनिया को सुरों की विरासत देने आए थे। वो अक्सर कहते थे कि मैं तो सिर्फ गाता हूँ, सुर तो ऊपर वाला लगाता है। 31 जुलाई 1980 को जब उनका निधन हुआ तब मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। कहा जाता है कि उस दिन सिर्फ उनके चाहने वाले ही नहीं बल्कि आसमान भी रो रहा था। उनके जनाजे में हजारों की भीड़ थी जो किसी बादशाह की विदाई से कम नहीं थी।

0: anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart touching.
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।

0: रेडियो मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: जमाना एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा
1: हा हा हा छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा
1: जमाना क्या कहेगा
0: दीवाना क्या कहेगा
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग
3: गाड़ी चलाओ

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart-touching.
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: या तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हैड टची।
1: ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना।

आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख समा है।

तेरे हाथों से अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना, दामन न बचाना मेरे हाथों से अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना, ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी.